0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

भगवान का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-226-6611। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। रविवार का दिन है, इतवार का दिन, सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर है।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। ये सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश

की सेवा में। चले एक भजन पेश किया जा रहा है फिल्म बजरंग बली का, और आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज में ये सुंदर सा भजन जो पेश किया जा रहा है।

पर भजन सोनू निगम की आवाज में पेश की गई है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। गुरमीत और मीना की आवाज में एक सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है। गुरमीत और मीना की आवाज में ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NLC वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा भजन।

सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में हरिओम शरण और नंदनी शरण जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये सुंदर सा भजन आज के प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक भजन की ओर हम आपको ले चलेंगे चित्रा सिंह की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, और इस भजन के बाद प्रोग्राम में आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुंदर और सुंदर भजन चित्रा सिंह की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खासतौर पर आरती भजन की ओर। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आयशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। अब की बार फिल्म घराना का गीत।

और रेडियो वेस बीएस के जरिए मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी महेंद्र कपूर की आवाज में।

बशरी मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना है पेश की गई आज की प्रोग्राम में। चले एक बार फिर से मोहम्मद रफी एंड लता की ओर हम आपको ले चलते हैं। दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम, मुझे कितना प्यार है तुमसे, फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना, मोहम्मद रफी एंड लता।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम था। उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार मुखी सौलता होगा प्रोग्राम में। धरती कहे पुकार की फिल्म का नाम।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। किशोर एंड लता प्रोग्राम में होगा।

कितना प्यार है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी एंड लता की ओर हम आपको ले चलते हैं। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। और अब की बार मोहम्मद रफी एंड

रहे मोहम्मद रफी और खासतौर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आशा भोसले प्रोग्राम में होगा और आशा जी की आवाज में ये गाना

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, जाने चमन शोला बदन।

मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना पेश की गए, जाने चमन शोला बदन। सुन वालो, रेडियो SBS का प्रोग्राम शहडू ट्रैक से बस पेश किया जा रहा है और इस वक्त पुरानी नगमे आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: प्यार मरता नहीं दम निकलने से अरमान निकलने।
0: चलिए अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चलिए फिल्म आवारापन जुजान की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, अब आप बोली चलते हैं।

पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अमीन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपके बारे गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है इतनी सी बात, इतनी सी बात गाना का बोल।

अरे मित्र की आवाज में रेडियो SBS के जरिए ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए

सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अपनी बार तुलसी कुमार NKK की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। तुलसी कुमार NKK प्रोग्राम में

तुलसी कुमार एन के की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडी फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू की आवाज में गाना, और अब की बार फिल्म का नाम होगा इंडियन बाबू।

फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामों काज के लिए। टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। सोनू निगम एंड अलका।

की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना

रेडियो SBS की जरिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। कुमार सानू एन अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले मिलकर अरिजीत सिंह

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू जी की आवाज में।

की खास प्रोग्राम में ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। बहुत सी सुनने वालों है इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं रेडियो SBS का, सभी को वेलकम रिकेडू एंड रेखिलियो।

हजारों मीठे गाना आप सभी ने सुना आज रविवार की खास दोपहर का प्रोग्राम में सुनकर और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03226 66 11 और इसी डार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। देश विदेश में भी

गाना जो पेश की गए, जब चाहे मेरा जादू। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना बस पेश की गई सविता सिंह की आवाज में। सिर्फ मिनटन फोर हाफ टू स्टूडियो टाइट संदेश सुदीन

रेडियो SBS के जरिए संदेश सुदिन के आवास में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम में होगा मिस्टर ब्लैक।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। उसी सुनने वालों बस रेडियो SBS का ऐप पर अपना अपना रिएक्शंस देते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

इंद्रनील और प्रशांत की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। 11 मिनटों ओवर हाफ टू स्टूडियो टाइट हो चुका है, चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर।

सुन वालों की सेवा में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए आसरो बीठे घिए ये गाना आपने सुना आज की लोकल गाने का खास प्रोग्राम में और काफी पसंद आया है। सुन वालों आज का मौसम बादल छाया हुआ मौसम है, कहीं कहीं थोड़ी सी धूप दिखाई देता है और आज का मेरा टेम्परेचर तकरीबन 21 डिग्री से 29 ग्राद होने वाले हैं। कल से टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ऊपर की ओर जाने वाले हैं। कल मेरा टेम्परेचर ऑनगेर 25 ग्राद होने वाले हैं और इसी सप्ताह में आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री 30 ग्राद की ओर जाने वाले हैं। चले प्रोग्राम में अबकी बार सविता सिंह किंग सेलेक्टर एंड

रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। चले आज की इस खास लोकल गाने का खास प्रोग्राम में एक आखिरी गाना बस पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे संजय जोधा की ओर। गाना जो खास तौर पर स्पेशल किसी ने

रेडियो SBS के जरिए संगीत भरी स्टेशन और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बज आज की इस दोपहर का प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गीत की ओर, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

मृत्यु फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हमारा प्रोग्राम की आइंदा तक कुछ खूबसूरत प्यार भरी गाने नगमे आप हर के लिए बस पेश किया जा रहा है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों एक आखिरी और आखिरी गाना पेश होगा हमारा आज की प्रोग्राम में, और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। कल सुबह ठीक 7 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी हमारे बात ग्लेन के जरिए प्रोग्राम सुनते ही रहना, और 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम पेश किया जाएगी। उस प्रोग्राम में आप सभी को पूरा मौका है तार करने के लिए और एक गाना मांग करने के लिए। इजाजत और आज्ञा दीजिए, मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन, मिलूंगा आपसे कल सुबह ठीक 7 बजे।

0: रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। किशोर कुमार के आवाज में दी ओपनिंग नंबर भी आप सुन रहे थे हमारा हिस्सा के प्रोग्राम से। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार ग्लेन, बस सुनते रहना हमारा प्रोग्राम यहाँ से ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS, और वो भी शहर के अंदर से।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे।
0: सोनू निगम और साथ में अलका याग्निक के आवाज में सुनते रहना।
1: कराई है तुम्हें, छू कराई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लूंगी।

पंछी नदिया पवन सोनू निगम साथ में अलका याग्निक के वास में भी आप सुनते पद्माश्री मोहम्मद रफी के वास में

मोहम्मद श्री मोहम्मद रवि के वास में अभी आप सुनते किशोर कुमार के वास में अब की बार।

पीछे एक लड़की, किशोर कुमार के वॉइस में भी आप सुने थे कुमार सानू के वॉइस में सुनते रहना और इसी नंबर के बाद सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, न्यूज, फरके से फमासी और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो एसबीएस।

तीन बजकर इस वक्त 4 मिनट गुजर रहा है। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर रेडियो SBS, वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम लाइव के जरिए।

बेवफा यू तेरा मुस्कुराना, अमित सिंह गुलाम के वास में अभी आप सुन रहे थे 032-65-65-60 हर एक इन्फो के लिए, यानी कि फरमाइशी इश्तिहार या तो मृत्यु समाचार के लिए, हर एक रेडियो के कारोबार के लिए, वो भी 24 घंटा लगातार आप तार कीजिए 032-65-65-60 और साथ में स्टूडियो का तार का नंबर 032-62-66-11 आपको दिया जा रहा है।

के पाथी मोरा ले जा सुगनवा, ले जा सुगनवा तो आम सल्फेन से खिसला की पसंद सुनते रहना।

पाथी मोरा ले जा सुगनवा तू। हम सल्फेज से खीसला की पसंद, अभी आप सुन रहे थे

0: वीरेश छेदी के वास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से
1: आशा के सुरवा मैं नहीं मांगे
0: रशिका दीनदयाल के वास में सुनते रहना। अच्छा कुमार नंदा का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

0: के मुर्गा हुआ है दीवाना।
1: मुर्गी को रखना संभाल मेरा मुर्गा।
0: इत्रेक से उषा रामबली की पसंद भी आप सुन रहे हैं। फ्लुइटन फ्लुइटन फ्लुइटर वाइड से यानी कि गिरधारी स्रात फ्लुइटन फ्लुइटर वाइड से राजन गिरधारी का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

उस्ताद के उस्ताद रामदेव चैतू के पास में भी आप सुन रहे थे गिरधारी स्त्रा फ्लूट फ्लूट वाइद से हमारा बीरमान राजन गिरधारी का पसंद भी आप सुन रहे थे।

के दिल दिल से मिला कर देखो। रविंद्र सिंह सिवनाथ के पास में अभी आप सुनते एद से जसवंत और साथ में सीला की पसंद, अभी आप सुनते।

के कैसे द्रौपदी के चीर बराई राजू सिंह गुलाम के पास में भी आप सुने थे बैठक गाना बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS और वो भी शहरी तरह के अंदर से रोबर्टो लक्की शरण के पास में सुनते रहना।

के प्रीत के रीत न जाने, रोबर्टो लक्की शरण के वास में सुनते रहना। एस स्टैन से रामोन ज्वाला प्रसाद का पसंद सुनते रहना।

के प्रीत के रीत न जाने सके। रोबर्टो लक्की सरन के पास में भी आप सुन रहे थे एजस्टाइन, एजस्टाइन से रामोन ज्वाला प्रसाद का पसंद भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से भी। पाती मोरा ले जा सुगनवा तो हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना बैठक गाना, बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS।

आलोक कुमार के पास में, आलोक कुमार और साथियों के पास में भी आप सुनते प्रोग्राम से। की चोलिया चोलिया कस के सिवयो रौती रब रूप के पास में सुनते रहना। दे भाई प्लस के जरिए हॉलैंड कैलेंडर में और साथ में ऑनलाइन ऑनलाइन के जरिए हॉलैंड के अलावा दुनिया के हर एक कोने कोने में को हमेशा सुनते हैं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम।

रात के 12 बजे। रात के 12 बजे दिल के घड़ी करे। प्रवेश गणपत सिंह के आवाज में सुनते रहना।

0: आओ माय डार्लिंग चले हम खाए पिए और मौज करे।
1: मोरे गोरी सुनो मोरे बात रे
0: देवानंद गत्तू के वास में

राकेश यांकरन के वास में अभी आप सुन रहे थे हेदल के रहने वाला हेन नारायण का पसंद

के सागर पनिया पे गायले दोनों जनेना। 5:00 इस वक्त 5 मिनट गुजर रहा है। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS।

0: पिंग पिंग पिंग हम सुनते हैं कि दिनों रात में टेलीफोन, यू आर देयर एंड आई एम हियर डार्लिंग, बट वी डोंट हैव टू से अलोन। आधी रतिया तो और बलमुआ, आधी रतिया
1: के आधी रतिया, आधी रतिया और बलमुआ,
0: आधी रतिया।
1: स्टेफन पिकर के आवाज में सुनते रहना।

0: sit on my pagri. Come and sit on my pagri. David Singh Sivnat ke vaas mein abhi aap sunte विशाल हीरा के वास में सुनते रहे ना
1: बदला कोई मौसम बदले ना
0: हमार रनिया सुनते रहे।

आवाज में सुनते रहना। और देखा जाए तो माइकल सुकू का पसंद सुनते रहना।

रामदेव चैतु के पास में सुनते रहे ना आपकी बार के बार बार बगिया में कोयल न बोलत। Utrecht, Leidse Rijnse, Rajez Udit Kapasant.

बस समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल न्यूज पर केस फार्मेसी और उसके बाद में आज आंचलिक के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आपका खिदमतगुजार ग्लेन। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

जहां भी जाएगी तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। आई लव यू माई एंजल वॉज द फिल्म प्यारे मोहन एन इस गजोंग दूर कुनाल गांजावाला। Het volgende liedje via Radio SBS in het programma Gitoon Kelleher is gezongen door Arijit Singh. Uit de film Holiday komt Aaj Dil Shayarana Lagta Hai.

सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी केर खसाओ दो जुबेन नौटियाल आयो द फिल्म सनक। हाँ वादा फैदर मैं चाइलेंद्र सिंह मैं आयो द फिल्म जमाने को दिखाना है। होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jibin Nautiyal en Preetam komt het volgende liedje via Radio SBS in het programma Geeton ke Leher. Uit de film Tadap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

दिलबर मेरे कब तक मुझे यूं ऐसे ही तड़पाओगे, वास आयो द फिल्म सत्य पे सत्ता अफान अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी। Gaan we verder met uit de film Love Yatri. In het programma Gitonkeleher via Radio SBS is gezongen door Atif Aslam Terahua.

हाय, क्या थे वो दिन। बस द फिल्म छिछोरे, द फिल्म फन सुशांत सिंह राजपूत सामा में श्रद्धा कपूर, दिल्ली दिस गजोंद और तुषार जोशी। गजोंद और अलका याचिक कम तो फोहत लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर। द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे, कौन क्या हुआ तुझे।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.